0: हाँ परिवार
1: का बिना था इस बार
0: Our species are not so available for more of us, but no problem.